श्रीमन्नभीष्टभटाखिलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तरदिव्य

प्रयच्छ प्रयच्छ अहं भूरतस्ते पदाम्भोज युग्मः प्रणामे क्षयाकर च सेवां करोमि सर्वसेवया निमित्त

कृताय निर्वज्ञाय सुजलम् शान्तिं करो भुवनगिरीशं जातु भक्त्यम् श्रीचक्रियाधरितया पदुपाय भागे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय